इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आ

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात।

रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। क्षमा हो

0: Jesus. Con a...
1: Dios. Dios. Dios.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप मजेदार शो व्हाट्सएप बोले तो दोपहर के 2 बजे तक हम हियर इन द स्टूडियो आपसे बतियाने के लिए आपकी सुनने के लिए अपनी सुनाने के लिए और आपकी कही सब तक पहुंचाने के लिए और इस फ्रीक्वेंसी पर हाँ आप भी जुड़ सकते हैं अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं 8899-0409-0409 नंबर 8899-0409-0409 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज रेडियो चैनल हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में ब्रदर जी हाँ ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर
3: रेडियो चिनार रेडियो रेडियो चिनार वेदर अपडेट
2: जी हाँ आज का मौसम थोड़ा उखड़ा थोड़ा सा गुस्सेल होने वाला है जी धूप गुस्सेल नहीं बल्कि बादल गुस्से में है आज इस पार्टली क्लाउडी फॉर द डे और साथ ही संभावना है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी या गरज बरस भी हो सकती है आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस वैसे गर्माहट तो है लेकिन साथ साथ आंधी तूफान की भी आशंका है वही अभी के लिए मॉडरेट है यूवी इंडेक्स ह्यूमिडिटी 62% विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर विजिबिलिटी 16 किलोमीटर आज का सनराइज हुआ 5:33 पर आज का सनसेट होगा 7:24 पर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-0409-04 इज द नंबर 8899-0409-04 नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज Zeus, the bad boy of radio, मेरी इंस्टा आईडी पर डीएम करके भी शो में शामिल हो सकते हैं आप हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन सिरे हक धड़काते रहो

0: juice. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे.
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
2: दोस्तों रेडियो चनार की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि जब वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है. एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम वायरल चीजें आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि क्या ज्ञानी लोगों ने भी ये बात है मानी कि जाने वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा.
3: व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं एक ऐसे पोस्ट की जिसने हक्का बक्का कर दिया सबको. जी हाँ, टेक इन लास्ट 24 आवर्स और उनकी तरफ से शाया किया गया ये पोस्ट रहा वायरल. इट वॉज वायरल एवरीवेयर एंड वायरल इन अ वे के अब ये बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है दैट आर लाइकली टू हैपन इन ये 2050 आते आते इंसान जो है बताया जाता है जानवरों से बात करने लगेगी, क्योंकि एआई जो है डिकोड कर रहा है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑफ व्हेल्स एंड स्पर्म व्हेल्स, जिससे बताया जाता है कि आने वाले वक्त में यानी 2050 आते आते हम उनकी भाषा समझ पाएंगे. प्राइवेसी खत्म हो जाएगी क्योंकि स्मार्ट डस्ट इस्तेमाल की जाएगी, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जितने सेंसर जो कि रियल टाइम में पॉपुलेशन एनवायरनमेंट अपडेट्स पहुंचाएंगे जो भी जहां भी उन्हें पहुंचाने होंगे. सो स्मार्ट डस्ट विल बी यूज्ड इन पॉपुलेशन. फ्लोटिंग ओशंस जो है, फ्लोटिंग ओशंस फ्लोटिंग सिटीज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सी लेवल जो है अप हो रहे हैं और अप अप इन द वे हो जाएंगे शहर भी.

जी हाँ, अगर हम बात करें मैमथ्स की, अगर आप नहीं जानते मैमथ्स क्या है, मैमथ जो है पुराने जमाने के हाथी थे जो बड़े ही खूंखार, रोबदार, एकदम राज कपूर समझ लीजिए हाथियों के, बट वैसा नहीं कि पैं के बल पैं करते रहे, ये है कि इनके बाल होते थे, बड़े साइज के हाथी होते थे, और बताया जाता है कि काम हो रहा है और ये जो हाथी है शायद 2050 आते आते हमें फिर से देखने को मिले। हाई स्पीड ट्रेन जो है प्लेन्स को रिप्लेस करेगी, मतलब सो टेंशन यू शासा एयरपोर्टस पे नहज इन छुन लगेज ज्यादा नहज मैडम यह लगेज वो चीज़ें भी ख़त्म होने को हो रही है, क्योंकि रिप्लेस करेंगी फास्ट स्पीड ट्रेन जो है एरोप्लेन्स को, और बनाया जाएगा अर्थ का डिजिटल ट्विन, जिससे हम 100% एक्यूरेसी के साथ डिजास्टर्स, वेदर वगैरह को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और इस डिजिटल ट्विन को भी हम देख पाएंगे 2050 आते आते। अब जो आएगा वो आएगा 2050 से हटकर, अगर 2026 आज के दिन की बात करें, कह में उनकीस बजे 10:18 रिकॉर्ड बड़ दमदार। Getting to you my personal favorite, Divi, it's a remix by Arab Acid House. क्या कमाल का डीजे, मतलब अगर तू गुएचो ना चलाओ वॉल्यूम बढ़ाओ तो आस पास जो लोग हैं ना आपके साथ हिलने लगेंगे, खुद थिरकने लगेंगे, बिकॉज इस काइंड ऑफ म्यूजिक मेरी रील पर भी देखने को मिलेगा। हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, मैं हूँ ज्यूस, जान ज्यूस, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो, मजेदार शो, व्हाट्सअप स्टे हक्ट, मेरी जान धड़काते रहो।

0: العرقوب زين
1: in the dark biggest

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं,
1: हंगामा होगा।
2: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
2: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर दिल को धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM और पर हम मिलकर धड़का रहे हैं इस हर दिल की धड़कन को। आप सुन रहे हैं मजेदार शो वो सब, मैं हूं आपका साथी आरजेसूस। रेडियो चुनाव की हॉट फ्रीक्वेंसी पर आप भी जुड़े, 8899904904 इज द नंबर। शो में आज बात हो रही है INFJ पर्सनैलिटी की। जी हाँ, इस पर्सनैलिटी के क्या है ट्रेट्स, क्या है फैक्ट्स, क्या है साइकेट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बताए गए नंबर 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। मैं हूँ जॉक्स, आप सुन रहे हैं मजेदार शो वो सब।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

The dawn of radio.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: Zeus.
1: Kona jo.
2: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
3: Dosto Radio Channel 90.4 FM show. What's up show ka segment Bollywood News.
2: Bollywood News.
3: मैं हूं जॉक ज्यूस, आप एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग शो, मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में बॉलीवुड न्यूज। आइए बताते हैं आपको क्या है मुकेश खन्ना का सोचना। मुकेश खन्ना की सोच कुछ इस तरह से है कि मुकेश खन्ना जो कि कभी शक्तिमान का कैरेक्टर किया करते थे, इस तरह से खो गए हैं उस कैरेक्टर में। जब भी रणवीर सिंह की बात आती है फॉर शक्तिमान, तो उनका कहना है कि भैया मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करने देना। नव शक्तिमान जिसका कॉपीराइट मुकेश खन्ना के पास है, उनका कहना है कि रणवीर सिंह शक्तिमान करने की बात पर अड़े हुए हैं और जिसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए रणवीर सिंह जो है किलविश का कैरेक्टर कर सकते हैं।

बट शक्तिमान का नहीं। मैं चाहता हूं कि कुछ नए चेहरे हैं जो शक्तिमान का फेस जो है उसके लिए इस्तेमाल किए जाए, शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किए जाए, बट रणवीर सिंह इज नेवर अ चांस। और इस फ्रीक्वेंसी है दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM जग से उसके साथ मजदार शो सबसे हक मेरी जान धड़काते रहो।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: Zeus. कौन आया?
1: दोस्तों वक्त हो चला है आज से इजाजत लेने का, जा रहा हूँ मैं। जी हाँ, आज के लिए इजाजत लेकर, लेकिन इस वादे के साथ कि कल होगी फिर से मुलाकात। मैं जा रहा हूँ आपसे जुड़ने आ रही है आरजे दीवा। शो का नाम रहेगा चिनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट। आप एंजॉय करने वाले हैं ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM। Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, khushbash, maslama.

देखिए प्यार तो हम करते हैं आपसे और वो भी बेशुमार। अब गान जलेबी तो नहीं पर मैं तो चली रेडियो चुनार की गली शो चुनार बीट्स लेके 91.4 रेडियो चुनार ब्रागास हो चुका है शो चुनार बीट्स का फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट क्योंकि बस इट्स शो चुनार बीट्स। मैं हूं दीप, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, shooting our beats, day sari baatein, masti mazak, fun, entertainment, ke alawa day sari information aap tak pahunchti hai, and I'm super excited, hamesha ki tarah, but it's Monday and Josh, it's very high. Hi, toh hona hai, dekhiye, Monday ko itna fun day banane ke liye, hamari soch hi kaafi hai, na, main subah subah ye pak jaati hoon sun ke, ki bhaiya, Sunday khatam hogi, toh obviously Sunday khatam honi honi hai, kyunki agar Sunday khatam nahi hogi, toh next weekend ka intezaar kaise rahega? अब यही है कि इंतज़ार में मज़ा है और उस प्यार में मज़ा है और यही कि पूरा हफ्ता बिल्कुल हम एनर्जेटिक रहते हैं उस संडे की वजह से. सो फील लाइक वी आर स्टार्टिंग अ न्यू डे, एंड ये तब होगा जब हम अपनी सोच को सही करेंगे सुबह सुबह. एक बेहतरीन सी थॉट सुबह की शुरुआत, खूबसूरत सी, आई नो कि सुबह की शुरुआत जो बेहतरीन सी थॉट से हो जाए, मज़ा आ जाए, लाइफ भी खुशी खुशी बोले कि भैया बस इतना ही तो चाहिए लाइफ में. अब आई एम श्योर आपकी शुरुआत काफ़ी डिफरेंट होती होगी, मेरी तो डिफरेंट रही है और आज भी मेरी डिफरेंट थी कि मुझे बात करनी थी. कल संडे थी, कल तो नहीं बात कर पाई, आज जी भर के बात करूँगी, खुल के बात करूँगी. एंड सेम आई एम एक्सपेक्टेड कि एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये चीज़ कि हो सकता है कि ये मुलाकात, ये जज्बात, ये ख्यालात एक तरफा नहीं है, दो तरफा है. सो आपके हालात, जज्बात, ख्यालात सब कुछ इधर ही पे बात होगी और इधर ही पे पता चलेगा कि आखिर क्या है वो खास जज्बात. बिल्कुल आप और हम एक हो चुके हैं, ये समझ लीजिए. गाड़ी चल पड़ी है, सवारी आप है और बस अपनी सवारी आपको बताइए कब तक है. जी हाँ, 2 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे. शूटन और बीट्स पर.

देखिए फायर ब्रिगेड तो नहीं मंगवा सकते आपके लिए, बट आपके लिए चला सकते हम बैक टू बैक सॉन्ग्स दैट विदाउट एनी एडियन गेट फ्री म्यूजिक वादा देता है रिलीजन, और सबसे ज़्यादा भरपूर सबसे ज़्यादा आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 91.4 FM, मैं हूं दीपा शुचनार बीट्स, हक से मामा धड़काते रहो।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुना और बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुना 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेशनल हाईवे की बात करें, बोथ साइड से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है. आप जम्मू से श्रीनगर आ सकते हैं, जा सकते हैं, आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. बट बी केयरफुल, बी कॉशियस, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसे निभाना पड़ता है. खाली हमें ये सोचें कि ये तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, ड्राइविंग SOPs, सिग्नल, सीट बेल्ट लगाना, ये अगर कोई हमें रिमाइंड करे तभी हम इन चीज़ों का पालन करें, वो सही नहीं होता है. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बिहेव करना है सो दैट हम खुद से ही ये जिम्मेदारी निभाए और ये हमारा भी फर्ज है कि हम अपना ख्याल रखें. ट्रैफिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो भी है क्योंकि मेंटेनेंस चल रही है कई कई जगहों पे. सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए और गलत जगह पे ओवरटेक करना नॉट फेयर, क्योंकि फिर होगी हड़बड़ी में गड़बड़ी. क्योंकि हमें कभी लगता है कि चलो मैं क्या ओवरटेकर, या फिर हमें ऐसा लगता है बहुत चालाक है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हमसे ज़्यादा चालाक होती है भैया. और फिर वही है, फाइन भरना पड़ता है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी नुकसान हो. एंड व्हेन वी से वी केयर फॉर यू वी मीन इट. हम आप तक सही जानकारी पहुँचाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि आपका ख्याल रखना हमारी तो जिम्मेदारी है ही कि हम तो आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं. एंड आप ये भी बता सकते हैं रेडियो चुनार कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. वो बस वही नंबर है जो कि आपको नंबर जोड़ के रखता है. इट्स 8899-04-904. आप कॉल, टेक्स, व्हाट्सएप कीजिए. शो चुनार पीस कैसा बन जाइए. आई एम श्योर कि जवाब में मुझे यही आएगा कि जिस राह भी जाओ और वहाँ पर आपको रेडियो चुनार ही मिलेगा. तो बताइए कितना प्यार करते हैं हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM से, क्योंकि यह है हर दर की दरगन तो मामा हक से दरगाह.

Star Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

खबर ऑनलाइन जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर हूँ मैं हाजिर। तो वन बोझो तो खबर विस्तार सान की खबर तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सोशल मीडिया पर कहाँ, जी हाँ, कियारा आडवाणी काफी ज्यादा ट्रेंड अभी हो रही है क्योंकि उनकी मदर जो पोस्टमार्टम जॉनी है उसके बारे में काफी बात हो रही है, मदरहुड के बारे में बात हो रही है, बिकॉज वो काफी ज्यादा रो पड़ी, इमोशनल हो पड़ी अपने इमोशनल पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस को लेकर। शी वॉज लाइक यू रियलाइज कि जब आप माँ बनते हैं और आपको समझ आता है कि आखिर में आप कैसे खुद को संभालते हैं, आप किन चीज़ों से गुजरते हैं और आपकी वैल्यू क्या है, आप कितनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टर डिलीवरी या फिर अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें एक मदर को झेलनी पड़ती है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है एंड वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी यादगार होता है और आप खुद को खुद से मिला लेते हैं, आपको समझ आता है कि माँ बनना आसान नहीं होता है और आप ये समझ पाते हैं कि हमारी माओ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। एंड ऑल्सो शी मैंशन कैसे उनके हस्बैंड ने उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा और कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी जर्नी में उनका साथ दिया। ही अंडरस्टूड कि हम किस फेस से जा रहे हैं और वो उनने मुझे समझा और उनने बिल्कुल ही फील नहीं करवाया कि मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। और ये चीज़ अपने आप में ही बड़ी बात होती है जब आप समझ पाते हो कि हमारी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब माओं की बात करें, मदर्स डे था कल, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीबॉडी, क्योंकि हमारी माँ है ही हमारे लिए इतनी ज़्यादा कीमती कि उनके बारे में जितना भी बोले उतना कम है। सो हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। एंड बट आपको क्या लगता है कि 11 का जो

इमोशनल होना, या फिर एकदम से ही एक इंसान जो ये कहता है कि ये मैंने सोचा नहीं था कि लाइफ में इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू रियलाइज कि आप कुछ अलग ही इंसान हो. आपका एक्सपीरियंस क्या है आप मुझे बताइए. शो का ऐसा बन जाइए 8999 0494 कॉल टेक्स व्हाट्सएप कीजिए. शो चिनार बीट्स का ऐसा बन जाइए.

0: It's Vedharche Diva, only on Radio Channel 90.4 FM. 4 FM.
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

ये बातें जिनमें हम बात करते हैं रियलिटी टीवी शोज़ की, स्पेशली जब रियलिटी शोज़ की बात करें, टेलीविज़न पे जो भी रियलिटी टी शोज़ की बात आती है, जब भी आती है तो पीपल आर मोर लाइक क्यूरियस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग. बिग बॉस आता है तो उसका एक अपना ही एक क्रेज़ होता है. खतरों के खिलाड़ी अभी सीज़न आ रहा है, उसका भी एक क्रेज़ है. बट स्प्लिट्स वाला ख़त्म होने जा रहा है, लोगों को बहुत दुख हो रहा है, स्पेशली हमारी जो जनरेशन है, यानी कि जनरेशन जी, जेन सी जिन्हें हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्प्लिट्स वाला के लिए. एंड फाइनली स्प्लिट्स वाला ख़त्म होने जा रहा है एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा. आप स्प्लिट्स वाला देखते आप समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपका फेवरेट जो खिलाड़ी है, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है, वो जीतता है. अभी आपकी बोलने की बारी है कि आपने कौन सा सीज़न, कौन सा रियलिटी टीवी शो आप देखते हैं और किस में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और इन

टाइम करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो एक सही मैसेज आती है. हमें बता सकते हैं शो का ऐसा बन सकता है. फिलहाल के लिए हमने 8999 0494 पर कॉल कर ली, टेक्स्ट व्हाट्सएप करना है, शो का ऐसा बनना है. मेरे साथ सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM.

जो म्यूजिक ऑन डिमांड की एंट्री हो चुकी है वो द सॉन्ग मित्रम द बोर्डर्स। जी हाँ, काफ़ी ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा है और अभी भी वायरल है। आप मुझे बताइए आपका पसंदीदा ट्रैक है क्या, कोई जो आप सुनना चाहते हैं। 8999904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। शो म्यूजिक ऑन डिमांड का 7 जय। इमरान की पहली रिक्वेस्ट है मित्रांदा बूट, आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं ऑन रेडियो चुनाव 91.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। और ईशा की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप भी एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। क्या है ट्रैक? ईशा की पसंदीदा दिल देवर के फूल। आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं और ये आधा घंटा आपका है और आप अपना पसंदीदा जो भी आपकी चॉइसेस है उस पसंद के ट्रैक्स आप यहाँ पर सुन सकते हैं 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

का सुरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।

0: क्या बोला तेरे को? ये अपन के हैं।
1: जाना तो मैं नहीं चाहती हूँ, पर क्या करें, जुड़े तो लगते हैं फसाने जब आप नहीं होते हैं। बस इस साथ में सफ़र में, बस अभी मैं जा रही हूँ और शो हंगामा स्टार्ट होने जा रहा है। फुल ऑन ड्रामा के लिए नहीं छोड़ रही हूँ, बस कल आऊँगी आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। अपना ख्याल रखें, सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है हर दर्गे दरगाह।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

Exactly. This is the perfect time to have a company like me. That is RJ Astra, क्योंकि दो से चार रेडियो सुनार पे शो हंगामा होता है और शुरू तो करना है ड्रामा पर हंगामा होना जरूर

शो शुरू हो चुका है हंगामा जहाँ होता है ड्रामा एंटरटेनमेंट करंट अफेयर्स और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टॉक जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी।

से बात करना भी काफ़ी मुफ्त है और बस इतना सा एफर्ट है कि 8899-24904 पर कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, सर आप क्या महसूस कर रहे हैं, हाउ इज़ द एनर्जी आफ्टरनून में, क्योंकि देखिए खाना खाने के बाद ऐसी नींद आती है ना, बट ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें और हम अपने दिन के जो भी वाइटल टास्क हैं वो कर

एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। देखिए बहुत सारी बातें हैं, पर अभी शो शुरू हुआ है तो टाइम तो लगेगा। देखिए टाइम लगेगा और टाइम बराबर चार तक है हमारा, तो एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स पे। हूँ अजरा, बस यूं कही और यू वापस आई।

0: ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब, शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसे कि अभी वक्त है कि हम बात करें क्या है ट्रेंडिंग, आखिरकार क्या चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, यूट्यूब है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखिए दैट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी ही जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कभी भी ट्रेंड कर सकती हैं, इवन इफ इट डजंट मैटर कि वो फ्रेशली रिलीज हो या पुरानी हो। और आज एक ऐसा ही ट्रैक है अमरिंदर गिल का जो जुदा 2 मूवी से है, एंड दिस ट्रैक इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 ईयर्स पुराना। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। गाने का नाम है मेरा दीवानापन, और अगर देखें सिर्फ और सिर्फ ये गाना नहीं बल्कि अमरिंदर गिल के बहुत सारे ट्रैक्स अभी ट्रेंडिंग है, लोग सुन रहे हैं और नई जेनरेशन भी काफ़ी पसंद कर रही है। और दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल कि अगर आर्टिस्ट अच्छा हो तो टाइम का कोई लाइक इट डजंट मैटर व्हाट टाइम इट इज़, इट डजंट मैटर कौन सा एरा चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। सम आर्टिस्ट आर जस्ट

everlasting. Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sonar 90.4 FM. मैं हूँ अस्रा, show है अंगामा में, बस यूं गई और यूं वापस आई.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

देखिए आपका और मेरा राबता तो बहुत गहरा है और बराबर साथ तक रहता है राबता। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन है और आप सुनेंगे और आपने भी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, वो हमसे शेयर कीजिए। And this is just a reminder कि you can be the part of the show and moreover जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो आज कल बहुत ज़्यादा prominent है, that is YouTube Fan Fest। और specially अगर हम बात करें 2025 की, तो सितंबर में ये Fan Fest हुआ था और हर सितंबर में ये Fan Fest होता है जहाँ पे हमारे ऑडियंस के जो भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं, जो भी फेमस क्रिएटर्स हैं, वो आपको एक ऐसा साइड दिखाते हैं अपनी लाइफ का या परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, एंड दैट इज सच अ फैसिनेटिंग थिंग। और क्या क्या होता है और कैसे एक्ट्स होते हैं, क्या इनकम है और कौन कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअली 2025 फैन फेस्ट में थे और कैसा रिस्पांस था, उसके बारे में बात होगी। मैं मुस्रा, सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM और आप भी बन सकते हैं शो का हिस्सा। 8899904904 इज द नंबर, आई रिपीट, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। मैं मुस्रा, सुनते रहिए रेडियो चुनार। मैं बस यूं गई और यू वापस आई।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
2: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार जहां हंगामा और ड्रामा साथ होता है। जी हाँ, आज हम YouTube फैन फेस्ट के बारे में बात करें और जो रीसेंट फैन फेस्ट हुआ था वो 2025 11 सितंबर मुंबई में हुआ था जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स, चाहे वो म्यूजिकल एक्ट्स करते हैं या उनका कॉमेडी स्टैंड अप्स होता है, बट ऑल ऑफ दोज क्रिएटर्स हैड अ स्टेज और वो ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म कर रहे थे। और स्पेशली अगर हम गेस्ट की बात करें, परफॉर्मर्स की बात करें, महेश केशवाला जिसे हम थगेश के नाम से भी जानते हैं, वो एक रोस्ट कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, पीपल लाइक टू वॉच इट एंड ही इज नोन फॉर हिज फैमिली फ्रेंडली स्क्रिप्ट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें खुशा कपिला की, शी इज अ वेल नोन, राइट नाउ शी इज अ बिजनेस वुमन आल्सो, बट एक वेल नोन फीमेल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है। इसके अलावा बात करें संजू राठौड़ की जो कि एक म्यूजिशियन है, इसके अलावा डिवाइन जो कि एक फिनाले परफॉर्मेंस हुआ था 2025 में उन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा मैं कहती जा रही हूँ इसके अलावा क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं एंड दिस इज सच अ ह्यूज फैन फेस्ट एंड व्हेन आई से ह्यूज आई मीन इट। इसके अलावा ये भी है कि वहाँ स्पेशल अपेयरेंस भी होती है बॉलीवुड एक्टर्स की, जैसे कि वरुण धवन वहाँ आए थे, उन्होंने

अपना प्रेजेंस दिया था और स्पेशली उनकी जो मूवीज आ रही थी उन्हें भी प्रमोट किया और जो कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे लाइव परफॉर्मेंस होती है, कॉमेडी एक्ट्स होते हैं और सबसे बड़ी बात और सबसे क्रेजी बात यह है कि कैसे वहाँ इंटरैक्शन होता है एंड देयर इज द ब्रिज, दिस इज एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन ऑडियंस एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स. अब देखिए क्रेजी बात है तो क्रेजी किया है रे तो वाइब होता है ना. देखिए ऐसी सिंक करेंगे हम, मजा आएगा. और आप ही बताइए कि आपको कौन से क्रिएटर्स पसंद है. और अगर मैं अपनी बात करूं तो आई लाइक क्रिएटर्स जो एक्चुअली सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं कॉमेडी के हिंट के साथ ताकि लोगों को एंटरटेनिंग भी लगे और वो ये भी समझे कि क्या चल रहा है दुनिया में और किस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए. मैं हूँ अस्ट्रा शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM और सुनते रहिए रेडियो सुनार. मैं बस यूँ कही और यूँ वापस आई.

हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. And as we are talking about YouTube Fan Fest, अब बात हो गई कि वहाँ कौन आता है, क्या होता है, पर लोग, audience, common people, how do they reach there? सबसे पहले जो general admission है वो यही होता है कि जो भी YouTube Fan Fest social media handles हैं actually, वहाँ पे announcement होती है और वहाँ पे भी general जो public है वो apply कर सकती है ताकि उनको passes मिले. उसके अलावा अगर हम VIP passes की बात करें तो बहुत सारे creators अपने die hard fans को या लाइव स्ट्रीम्स में VIP पासेस देते हैं एंड यू जस्ट हैव टू बी लकी और यू जस्ट हैव टू बी सच अ बिग फैन ऑफ दैट क्रिएटर कि वो खुद आपको स्पेशली इनवाइट करे. इसके अलावा जो भी लाइव स्ट्रीम्स रहती हैं रिलेटेड टू YouTube फैन फेस्ट चैनल पे, जो YouTube पर मिलेगा आपको या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, वहाँ पे ब्रॉडकास्ट, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है जहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई अवेलेबल टिकट है स्पेशली फॉर VIP और VVIP के लिए. एंड अगर हम बात करें इसके अलावा जो भी परफॉर्मेंसेस रहती हैं आपको स्पेसिफिकली, जिस तरीके से कॉन्सर्ट्स में होता है, आपको जिस तरह की टिकट आपने खरीदी हो

0: उसी तरह से आपको आपका ट्रीटमेंट होता है. बट उसके अलावा भी अगर देखा जाए, YouTube Fan Fest इज नोन फॉर इट्स सर्विस, और कहीं ना कहीं इट लाइक मेक्स देम अ लॉट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो. YouTube को काफ़ी रेवेन्यू मिलता है, बट रेवेन्यू के साथ साथ वो अपने फैंस का काफ़ी ख्याल रखते हैं. और आप भी बताइए कि आपका कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो आपने देखा है एक्चुअली फैन फेस्ट में, और आप बोले थे काश मैं वहाँ जा पाऊँ, काश मैं उनसे मिल पाऊँ. क्या पता मिल पाए, क्योंकि होने वाला है YouTube फैन फेस्ट इस साल बहुत जल्द. और कहाँ वो कुछ ब्रेक के बाद बताऊंगी.
1: नखरा फुल दिखावे, हाय नी तेरा कुका कुका.
0: देखिए YouTube Fan Fest 2026 कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस बारे में जो भी डिटेल अभी तक बाहर है, जो भी अभी तक हमारे पास डिटेल है, वो आप तक पहुँचाएंगे. पर कुछ ही ट्रैक के बाद मैं हूँ अस्रा, शो हंगामा सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.
2: ओ डीजे वाले, ओ बात सुन, कोई कोका जा गाना लगा दे यार.

0: भाई नहीं तेरा कुका कुका कुका कुका कुका कुका।
1: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
5: Man, do the Just Must Music Mix, man. Tap your feet, free your minds, and let your spirit soar as we pour ourselves into a new world of ecstasy with the Must Girls.
6: You know, every time I see him,

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे, यानी कि YouTube Fan Fest 2026 कब होने जा रहा है, क्या होता है YouTube Fan Fest में, क्यों होता है, कौन वहाँ आता है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। पर जो 2026 का इवेंट होने जा रहा है, दैट इज़ प्रोबेबली अराउंड अगस्त सेप्टेम्बर। अभी मेन स्टेज जो एक्चुअली इवेंट होने जा रहा है, वो उसके अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। और अगर हम बात करें यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट की, 2026 वो ऑलरेडी हो चुका है, अप्रैल 17, 2026। और बहुत सारे जो भी लाइक सेशंस हुए थे वहाँ पे, एंटरटेनमेंट से लेकर जो भी नेटवर्किंग मार्केटिंग से रिलेटेड है, सब कुछ वहाँ हुआ था। और अगर रिसेंटली बात करें अर्ली मई में, यानी कि मई में ही एक YouTube फैन फेस्ट कोरिया 2026 लॉन्च हुआ था, जो कि एक लाइव शो था जहाँ पे लोकल कंटेंट क्रिएटर्स स्पेशली कोरिया के जो थे या जो भी पॉप कल्चर से बिलोंग करते थे, उन्होंने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट किया। और वहाँ पे हमें पता चला कि जो कोई भी लाइक अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी YouTube फैन फेस्ट होने जा रहे हैं एज अ वर्ल्ड टूर। अब देखिए, आप बताइए कि आपको इस सब में से क्या ऑलरेडी मालूम था और क्या पता नहीं थी।
3: मम्मी को नहीं है पता।
2: अब देखिए, मम्मी को तो ये सब बातें पता नहीं होती हैं, पर आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। मैं मास्टर शो है हंगामा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और कुछ ही ट्रैक के बाद हम पहुंचेंगे नए सेगमेंट पे, और वो क्या होगा वो तो आपको पता चलेगा। यू हैव टू स्टे ट्यून टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम। मैं बस यूं कही और यू वापस आई।

0: रख। मरना है एक बार, मरने से पहले जीना सीख ले।
1: जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम, जिगी जिगी दम।

0: The game is on. Tune into Radio Tuna 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Tuna 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूँ अश्रा और आप सुन रहे हैं शो हंगामा. पर अभी है वक्त कुछ और करने का, यानी कि शुरू हो गया है गेम ऑन, जहाँ मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल हो. तो जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा, क्योंकि कुछ ही ट्रैक्स की बात, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स के. मैं हूँ अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: The game is on. Tune into Radio Tuna 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Tuna 90.4 FM.
1: वेलकम बैक टू शो हंगामा एंड सेगमेंट गेम ऑन. और अभी हम बात करने जा रहे हैं IPL के बारे में, क्योंकि देखो अभी तो मजा आएगा ना भीड़ू, बिकॉज दीज आर द फाइनल मैचेस एंड मजा आ रहा है. लोग मतलब टीम्स एलिमिनेट हो रही हैं, और सबसे पहली टीम्स पता है कौन है जो एलिमिनेट हो रही है? दैट इज मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स. ये दो टीम्स एलिमिनेट हो गई हैं, और जो मुंबई के राजा यानी कि जो राहुल है, उनका जो मतलब जो भी फैंस हैं उनके, दे आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, और कह रहे हैं शायद ये टीम की गलती है, ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है. मगर अगर हम बात करें जो क्वालिफाइड है और हु इज़ लीडिंग, दैट इज़ RCB विद 14 पॉइंट्स एंड 94.8% क्वालिफिकेशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि 95 अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके दे हैव द प्रोबेबिलिटी टू विन दिस IPL लीग ऑल्सो. इसके अलावा बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस आर ऑल्सो वेरी लाइक सुपर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, सेकेंड और थर्ड प्लेस पे है रिस्पेक्टिवली. अगर हम सनराइजर्स की बात करें वो सेकेंड प्लेस पे है एंड गुजरात थर्ड प्लेस पे है. इसके अलावा अगर हम बात करें जिनको अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा

and that is Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, and unfortunately Punjab Super Kings also. And unfortunately, क्यों पंजाब के लिए? Because this was the team जो actually lead कर रही थी and for the half of the league and suddenly अभी वो ऐसे like उनकी probability इतना drop हो गई है by 50% their winning probability has dropped and this is the fun of IPL, this is the fun of the cricket fever. और रही बात मुंबई इंडियंस, इंडियंस और सुपर जायंट्स लखनऊ की, उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता. चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे. जी हाँ, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के भी दिन आएंगे, बट देखिए अगले साल. मैं हूँ असरा, शो हंगामा, सुन रही है रेडियो सुनार. और आप भी बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं. 8899904904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. और टेंशन नहीं लेने का, अगर आपकी मतलब फेवरेट टीम्स इन दोनों में से थी जो एलिमिनेट हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता. बस ये है कि लाइक सपोर्ट योर सेकंड फेवरेट टीम और या जस्ट ऐसी बात करते रहिए कि या यू नो घर पे ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी टीम होती है जो आपको फेवरेट होती है एंड दे गेट एलिमिनेटेड, तो फिर लोग बाकी टीम्स की बुराई करते हैं. वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हम ओपन हैं. 8899904904 इज द नंबर, आई रिपीट. सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए इनका तो नहीं पता, पर जब चार बचते हैं तो मैं तो चली जाती हूँ। मैं हूँ आसरा शुभ।

ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. और जैसा कि अभी 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था, पर आज ज़रूर ये मौका है. जैसे सैटरडे मैं बोलती हूँ कि आज नहीं बोल सकती आज क्योंकि कल संडे है, पर देखिए देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, देर इज़ अ फुल फ्लेज्ड वीक विद यू गाइज एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. और देखिए कल वापस आऊँगी करने आपको एंटरटेन बराबर 2 से लेकर 4 तक. अभी के लिए सायोनारा. और जाते जाते बस एक ही एडवाइस जो हमेशा मैं देती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैं ये हमेशा ये प्रिंसिपल ज़रूर मानती हूँ, दैट इज़ कि अपनी लाइफ में क्रेजी मेमोरी ज़रूर बनाइए, आसपास जाइए, एक्सप्लोर कीजिए. अगर आप कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह रहते हैं तो यहाँ के जो एडवेंचर्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कीजिए और बस अपनी लाइफ को खुश रखिए, खुद को भी खुश रखिए और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने पार्टनर को खुश रखिए. मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. आज के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. ओवर.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम है।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान।

रेडियो जनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात
2: आप वांट
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

0: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

मैंने खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: भी है। क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
1: सौ बातों की एक बात यही है।
0: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी इंसान था।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।